लाइका गोल्ड। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी यानी

0: दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ ऑल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ ऑल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ ऑल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simzy before we left London.
2: Simzy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.
6: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना

मन कोय। मने शुद्ध होवे मन बुद्ध, मने सगल पवन की शुद्ध। मने मोह चोटा ना खाए, मने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मने मार्ग ठाक ना पाए, मने पत्स्यों प्रगट जाए। मने मग ना चले पंथ, मने धर्म से ती संबंध।

होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार। कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
0: Like a Gold, traffic and travel.
3: Good morning, this is Cameron McGarvey here. First of all, to Greenwich and Creek Road. We've got that closed there, both direct, eastbound from Norman Road to Greenwich Church Street. This is with a gas leak and a diversion operation for various bus routes, so do check and plan ahead. Otherwise, roads across London not looking too bad so far, but we've got a few issues on the public transport. First of all, Elizabeth Line, we've got late finishing of some works, no service between London Paddington and Abbey Wood, and severe delays on the rest of the line. Southern Trains, they've got points failure, no service between Clapham Junction and Watford Junction, and then on Greater Anglia trains due to emergency engineering works at Stratford, no service between Stratford and Leabridge.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Ilford, तैयार हो जाइए. Wednesday 15th July, शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला Ilford और पाइए Leica Radio के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका. साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ. बीकानेर वाला 513519 क्रैनबुक रोड, गेंटसिल, Ilford, IG2 6HA.
5: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
4: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: आपके सामने एक red button है.
10: दबा दिया.
9: नहीं दबाना था.
11: The madness is back. Dhamal 4.
12: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
11: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
13: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
11: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
14: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता.
15: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
17: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts. Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
0: Leica Gold.
10: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
18: ये है
19: लाइका गोल्ड
20: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: Visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: भाइयों बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में इंडिया फेमस छोले भटूरे अब मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड, गैंसू, इल्फर्ड, IG2-6HA, बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड।
2: अक्रॉस ग्रेटर लंदन, दिस इज काजल।

0: कोई आसान एक्सरसाइज दो, ये क्या?
1: चलो फिर से करो।
2: ओहो, छोड़ दो प्रताप, इसे छोड़ दो, इससे नहीं होगा।
3: हम विनती करते हैं, छोड़ दीजिए
4: प्लीज सर, नहीं तो हम सब

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 02087828833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali's story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
4: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
5: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
3: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
4: Thanks, playtime's over. Lovely.
6: Feel the fun. Play Ojo.
5: 18 plus gamble aware.
7: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।

0: What a classic, right? KJ, of course, yes, with us, and our very own Emlata. I do love this. Yeah, I think you can tell from the film Chitchor you heard here on The Breakfast Show. 10 minutes to eight is the time. Good morning. Like a
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And gold is trading at this morning, £97.6 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: Okay, so Inderji Thakur's got the right answer for today's Bollywood flashback. And Usman, it's not this, but you've got the two actors right, so I'll give you that. Nikhil, you finally got the answer right as well. So today's Bollywood flashback was pretty hard, wasn't it? It's, of course, the 1980 release film, which released on 11th of July, 1980, starring Devanand and Tina Munim. Directed by Basu Chatterjee, the film is, of course, Manpasand. Up next.
1: Like a Gold, traffic and travel.
2: Good morning, this is Cameron McGarva here. First of all, starting at Greenwich, Creek Road still closed eastbound with that gas leak from Norway Street through to Greenwich Church Street. The M11 southbound just before the North Circular, you've got delays and a travel time of around 15 minutes at the moment. And the M4 onto the elevated section, usual stop-start traffic from Junction 3 for the A312 at Hayes towards Brentford, and again adding 25 minutes to your journey there. To Greater Anglia trains, no service between Stratford and Lee Bridge following a lineside fire on Friday. And Weaver London Overground line, we've got severe delays between Enfield Town and Hackney Downs. That's your latest traffic and travel.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Ilford, tayar ho jaiye. Wednesday 15th July, shaam 5 baje aaiye Bikaner wala Ilford aur paiye Leica Radio ke presenter se milne ka khaas mauka. Saath hi taste kijiye India ke famous chole bature, crispy raj kachori, delicious mithai aur bahut kuch. Bikaner wala 513519 Cranbrook Road, Gentsill, Ilford. IG2 6HA. Bikaner
4: wala parampara bhi.
3: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद.
5: आपके सामने एक रेड बटन है,
6: दबा दिया.
5: नहीं दबाना था.
7: The madness is back. धमाल 4.
8: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
7: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख and जावेद जाफरी. Return in धमाल 4. Directed by इंदिरा कुमार.
9: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
7: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
12: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
13: Southall Travel, auto protected.
14: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922 3344 24-hour line.
6: London, the wait is over.
15: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
6: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
15: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
6: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
15: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
6: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
16: Haldiram's.
17: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीज, यानी के 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
18: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
19: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
18: यूरोप ना 3 थी 9 टूर्स
19: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे.
18: दर्शन पण अने यूरोप पण.
19: सीट्स जल्दी भराई रही छे. आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
18: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स.
19: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
20: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: your taste and budget. Call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: काजल का मॉर्निंग मंत्रा

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Like a goat.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office. On 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
7: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
8: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
7: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
8: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
7: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
8: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
7: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
8: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
9: भाइयों बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बिकानेर वाला अब इल्फर्ड में. India's famous छोले भटूरे, a match made in heaven. Family को लाओ, flavors of India का मजा लो. मिले 513-519 Grand Brook Road, Gansu, Ilford, IG2-6HA. बिकानेर वाला, now in Ilford.
10: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. आज ही एक्शन ले 0208-907-2444.
11: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
12: Rice khareedne ka perfect time aa gaya hai. Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg, ya 2 times 10 kg, ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality और वैल्यू दोनों एक साथ.
13: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
14: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: इल्फर्ड तैयार हो जाइए, वेंसडे 15 जुलाई शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला इल्फर्ड और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका। साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ। बीकानेर वाला 513519 क्रैनबुक रोड गेंटसिल इल्फर्ड IG2 6HA।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
1: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.

0: Leica Gold. Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस.
1: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
3: आपके सामने एक रेड बटन है, नहीं दबाना था.
4: The madness is back. Dhamal 4.
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
4: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
6: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
4: Watch the biggest family entertainer Dhamal 4 in cinemas now.
7: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता.
8: London, the wait is over.
9: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
8: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
9: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
8: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
9: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
8: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
10: Haldiram's.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
12: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
13: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाय रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
12: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
13: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
12: दर्शन पण अने यूरोप पण.
13: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
12: कॉल 0208900-2323. द स्टार टूर्स.
13: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
14: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good hits in the sun with Leica Gold.

वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। स्वागत

0: लंबा संगीत भाई सुनना पड़ा, क्योंकि अचानक क्या होता है कि कोई ऐसा समाचार मिलता है कि आप स्तब्ध रह जाते हैं, आप सुन्न हो जाते हैं, आप ऐसा लगता है जैसे कि जमीन ठहर गई है, आसमान रुक गया है, कुछ हो गया। खैर साहब, जिंदगी यूं ही चलती है, खुशी और हादसों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं हम। एक और मनोरंजन तैयार है। मंगलवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 14 तारीख हो गई आज।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.
0: और साहब, आज शायरी की डायरी नहीं खुली क्या? अरे साहब, क्या खोले, वो देखो क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि बाहों की तुझे हार हम पहनाएंगे एक दिन, और सब देखते रह जाएंगे, ले जाएंगे एक दिन। तो भाई ले जाइए ना यार, मतलब नहीं नहीं क्या है कि आप ले जाएंगे ये सोच करके वो तो पीछा छुड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। कब लेके जाएंगे?

भाई बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने सुनवाए आपको, दोनों के दोनों शादी से रिलेटेड। ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाओ भाई। और दूसरा गीत यार तेरे सब नाच रहे हैं, जैसे ही ले जाने की बात हुई तो भाई साथ देने वाले भी आ गए नाचने के लिए, ढोल बजाने के लिए, मस्ती मनाने के लिए बाराती। तो भाई ये दो शादी के गीत जा रहे हैं उन दो परिवारों के नाम जिन्होंने भाई वीकेंड पर धूमधाम से शादी की अपने बच्चों की। भाई एक तो कोस्टास और उनका जो कैप्रियानो परिवार है, और दूसरा जो है कमल विनायक और पूनम विनायक, उन्होंने अपने बेटे की शादी कोस्टास की बेटी क्रिस्टीना से बड़ी धूमधाम से की है। कहते हैं भाई गीत उनके नाम लगा दो, एक नहीं दो चाहिए।

तो भाई शिवम और क्रिस्टीना, आपको विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कह रहे हैं कमल विनायक, पूनम विनायक, अमिता, राहुल और सारे परिवार वाले, और इसके अलावा कोस्टास और उनके परिवार वाले भी। भाई इस मंगलमय जोड़ी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। यार तेरे सब नाच रहे हैं, खूब धूमधाम से शादी हुई, और भाई खूब धूमधाम से हमने गीत लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आज 14 जुलाई है, कुछ खास है आज, करेंगे जिक्र आगे चल करके। पहले तो पाउंड का रेट बताएंगे। UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch. Yes, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भिजवाने हो हिंदुस्तान तो भाई ये सही समय है। रेट अच्छा चल रहा है, हाँ थोड़ा और बढ़ गया है आज। आज का रेट वो कहते हैं कि फॉर वन पाउंड वी आर गिविंग 128.05 पाउंड्स पर ग्राम, 128 रुपए और 5 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। भाई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ही याद रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। Leica Radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements. फीफा फुटबॉल भाई अपने चरम पर पहुंच चुका है ये महाकुंभ मुकाबला फुटबॉल का। और साहब आपको बता दें कि फुटबॉल में आज वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल मुकाबला है, भिड़ंत होगी फ्रांस की और स्पेन की। शाम 8 बजे खेल शुरू होगा, लेकिन बहुत सारे लोग टीवी के सामने और भाई दूसरे माध्यमों से जुड़ेंगे ये मैच जानने देखने के लिए नतीजा। और भाई आपका लाइका रेडियो नेटवर्क भी आप तक जो है सूचनाएं भिजवाता रहेगा। तो आपको बता दूं कि आज फ्रांस का शायद नेशनल डे भी है, क्योंकि कौन से साल में बहुत पुरानी बात है, 1789 में वहाँ कुछ घटना घटी थी जिसके बाद उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू किया ये दिन। अब देखते हैं कि भाई वो आज के दिन को और विशेष बनाएंगे जीतकर या फिर स्पेन कुछ रंग दिखाएंगे स्पेन के खिलाड़ी। शाम को 8 बजे है, जो कुछ भी होगा हम आप तक पहुँचेंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बता दें कि हमारे जो स्पॉन्सर है ना, जो ये जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं, पहला सेमीफाइनल है आज, कल भी जो होगा उसका भी इंतज़ार रहेगा। तो भाई जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और ये बता दूं कि अगर आप हमारे स्पॉन्सर्स को फ़ोन करते हैं किसी लीगल मशवरे के लिए तो भाई लाइका कहना मत भूलिएगा, क्योंकि 15 मिनट्स का कानूनी मशवरा, लीगल एडवाइस, दे विल प्रोवाइड यू फ्री। This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203-345-2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Ye hai Leica Gold.

आंखें बंद करके भाई कल्पना की दुनिया में आइए नौका विहार करें, बोट में बैठ करके घूमें, पानी को देखें और सोचें कहां से आता है ये जल और कहां जाता है ये जल।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और बहन भाइयों, मनोरंजन प्रोग्राम में अभी अभी जो गीत हमने शामिल किया, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में और सागर मिले कौन से जल में, कोई नहीं जानता भाई। गीत की शब्दावली तो है ही अच्छी, लेकिन संगीत कैसा लगा आपको? वही, इस गीत के माध्यम से हमने याद किया महान संगीतकार रोशन को, रोशन नागरथ भाई। ये ऋतिक रोशन, इनके पिता भाई राकेश रोशन और उनके अंकल राजेश रोशन, सारा रोशन परिवार जो है काफ़ी जगमगा रहा है। तो आज ये रोशन परिवार अपने भाई पूर्वज महान संगीतकार रोशन का जन्मदिन मना रहा है। तो साहब हम भी थोड़ा सा योगदान दें, क्योंकि रोशन साहब कब जन्मे थे, कौन सा साल था, वाले देख के बताता हूँ अभी। आई थिंक लॉन्ग टाइम अगो रोशन साहब जो है वो जन्मे थे। द ईयर वाज, कौन सा साल था भाई, मैं उस वक्त नहीं था, 1917 था मेरा ख्याल। हाँ, 1917 में 14 जुलाई को गुजरांवाला, जो अब पाकिस्तान में है, पंजाब में था उस समय, मतलब एक ही पंजाब था। तो भाई रोशन साहब जन्मे थे और उसके बाद बड़े संघर्ष करते हुए ये मुंबई पहुंचे और भाई इन्होंने धुनें तैयार की और संगीत के क्षेत्र में अपना नाम जो है स्थापित किया। इन पर, रोशन परिवार पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, बहुत से लोगों ने देखी होगी। 16 नवंबर 1967 में 50 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, लेकिन जो धुने बना करके छोड़ गए हैं उनमें कुछ एक गीत हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बाकी बहुत सारी जानकारी तो आप जानते हैं कि बाली भाई के पास होती है, फिल्मी जानकारी वो भी लेके आएंगे। तो भाई संगीतकार रोशन को श्रद्धांजलि देते हुए अब मैं देख रहा हूँ कि समय हो गया है समाचारों का, आइए मुड़ते हैं आज की खास खास समाचारों की ओर। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो जहाजों पर 20% फीस लगाने के बयान के बाद ईरान का रिएक्शन सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के बयान पर कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात सही है, लेकिन 20% शुल्क बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ईरान उचित और बैलेंस्ड शुल्क वसूलेगा। वो ये भाई खुद वसूलने की बात कर रहे हैं, वो जो अपने ट्रंप साहब थे वो अपने ही तरफ से बता रहे थे कि हम 20% लेंगे, लेकिन ईरान कहता है 20% ज़्यादा, हम थोड़ा कम लेंगे। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट सही कह रहे हैं, जो भी कार्गो शिप्स को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सिक्योर और आसान रास्ता देगा उसे

क्योंकि सरकार के खिलाफ सत्ता के विरुद्ध जब कोई व्यक्ति कोई संघर्ष करता है तो भाई विपक्ष वाले साथ जुड़ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी यानी CJP के प्रोटेस्ट को अपनी पार्टी की हिमायत दी है। उन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ता यानी एनवायरमेंट जो कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक उनसे अपनी अनिश्चितकाल भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। अखिलेश यादव ने भी ऐसा किया है, 17 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो अपना आमरण अनशन, आमरण मतलब यानी मृत्यु तक अपना अनशन जारी रखेंगे, कुछ नहीं खाएंगे जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी। तो भाई इन्होंने भी अखिलेश यादव ने भी उनसे उनका ये अनशन खत्म करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ रुपए के मानहानि मुकदमे की चेतावनी दी है। BJP के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने अब्दुल्ला को एक लीगल नोटिस भेजा है और उसमें उनसे वो आरोप वापस लेने को कहा है जिसमें अब्दुल्ला ने कहा था कि BJP उनकी सरकार गिराने के लिए MLAs को विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। अब साहब CM अब्दुल्ला ने 11 जुलाई को श्रीनगर में ऑर्गेनाइज्ड एक रैली में यह दावा किया था कि BJP से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने जम्मू इलाके के कुछ विधायकों से, विधायक भाई MLA जो सीनेटर्स होते हैं, जो MLAs मतलब केंद्र में MPs होते हैं, राज्यों में MLAs होते हैं, तो इसने कहा कि अब्दुल्ला ने कि मेरे MLAs को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर उन्हें मानहानि का सामना करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस अमीरात के 2 तेल टैंकरों पर आज ईरान ने मिसाइल हमला किया है जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है। इस हमले में 6 हिंदुस्तानियों समेत 8 लोग जख्मी हुए हैं। UAE स्थित भारतीय एम्बेसी ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए इंडियन क्रू मेंबर्स की मौत पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय शेयर बाजार आज 14 जुलाई को गिरावट के साथ खुले हैं। निफ्टी करीब 24,100 से नीचे जबकि सेंसेक्स 77,200 पर बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें हमारी जरूरत है, हमें इनकी नहीं। अमेरिका के ताज़ा हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। इसका जिक्र करते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका इन देशों को सिक्योरिटी मुहैया कराएगा लेकिन उसके बदले में उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमें भुगतान किया जाए क्योंकि हम दुनिया के एक ऐसे बेहद प्रोस्परस हिस्से की सिक्योरिटी कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, हम इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें इन्हें कुछ पे करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी करेगा, साथ ही उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कार्गो जहाजों पर 20% फीस लगाने का ऐलान तो पहले ही किया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि सऊदी अरब के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला किया गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने कल सोमवार को सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों ने बताया कि ये कार्रवाई सऊदी अरब की ओर से सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है। भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील से जुड़ी रिपोर्ट को बताया फेक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो ओर ने भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर के आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। दरअसल समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत ने अमेरिका के साथ जल्दबाजी में कोई व्यापारिक समझौता किया है, नहीं समझौता करने से इनकार किया है और डील में बेहतर शर्तों की उम्मीद की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्सपर इस खबर को पूरी तरह से झूठी, बेबुनियाद और भ्रामक भटकाने वाली बताया है।
वल ये थे आज के प्रमुख

0: समाचार और भाई फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा से जुड़ी ये खबर तो आप सुन ही चुके हैं कि आज सेमीफाइनल का पहला मुकाबला फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। शाम 8 बजे मैच शुरू होगा यहाँ के समय के अनुसार और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मैदान से सूचनाएं और आप तक पहुँचाते रहेंगे। समाचार समाप्त होते हैं। और भाई आगे बढ़ने से पहले एक स्वादिष्ट खबर आ गई है। स्वादिष्ट खबर क्या होती है? अरे स्वाद आता है भाई बताने में भी सुनने में भी। और वो खबर क्या है, कहाँ है? यहाँ है इंडिया से लोकप्रिय स्ट्रीट फूड प्लेस। कौन सा है फूड प्लेस? बीकानेर वाला इज नाउ ओपन इन गैंट्स हिल इलफोर्ड, खुल रहा है। सेलिब्रेट द ग्रैंड ओपनिंग दिस वेंसडे यानी कल 15 जुलाई को शाम 4 बजे विद योर फेवरेट लाइका रेडियो नेटवर्क प्रेजेंटर्स। कौन आ रहे हैं भाई? शर्मा जी आ रहे हैं क्या? हाँ शर्मा जी भाई, क्या शर्मा जी फेवरेट नहीं है क्या? हाँ और भी भाई, तो पहुंच जाइएगा वहाँ। टेस्ट फेमस छोले भटूरे, राज कचोरी, मिठाई, चाट्स एंड मोर एट बीकानेर वाला इलफोर्ड 513 एंड 519, 513 से 519 तक क्रैनब्रुक रोड इलफोर्ड में, पोस्टकोड IG26HA, बीकानेर वाला द लेजेंडरी टेस्ट सिंस 1905 से कारोबार कर रहे हैं, इसीलिए तो भाई इनके स्वाद की चर्चा घर घर जन जन तक होती है। तो डोंट फॉरगेट टुमोरो इज ग्रैंड ओपनिंग इन इलफोर्ड। पहले भी इनकी जो ब्रांच खुली है भीड़ लगी रहती है वहाँ, और वो वेस्ट लंदन में थी, अब ईस्ट की तरफ ये ओपनिंग कर रहे हैं। टुमोरो एट 4 PM 513 क्रैनब्रुक रोड इलफोर्ड। सी यू देयर।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: tasty track of the hour sponsored by Coca Noodles is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
2: और साउथ ऑल ट्रेवल याद दिला रहे हैं भाई, विद दिस इज दैट वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट द एफसीडीओ हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कंपेटिटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Start

0: नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करना, ओके?
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और भाई LemFi के रेट्स मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी भारतीय मुद्रा में 128.73 रुपए, 128.73 रुपीज, पाकिस्तानी 372.99 रुपीज, श्रीलंकन रुपए 450.96, बांग्लादेशी टकाज 165.54, अफगानी दे आर गिविंग 88.94 एंड केनियन शिलिंग्स 173 एग्जैक्टली।
1: लाइका रेडियो। Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is trading at the rate of 96.72 pounds per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में। इंडियास फेमस छोले भटूरे, आ मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड, गैंडसू, इल्फर्ड, IG2-6HA, बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड।
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
3: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: Every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
8: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
7: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
7: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit gorgeouscouture.co.uk.
0: लंदन वालों ध्यान से सुन लो, के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kefurniture.co.uk पर जाएं।
9: Search is changing.
10: Customers aren't just using Google anymore.
9: They're asking AI.
10: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
9: One business, one recommendation.
10: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
9: Will your business be the answer?
10: Or the one that got left behind?
9: The future of search has already started.
10: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
9: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
12: when your husband's got his heart set on making the doer-upper open plan. Enjoy every thudding second of it.
13: Yes!
12: Be a step ahead with Barclays Premier, with our exclusive mortgage rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. All mortgages are subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply. New Barclays mortgage application.
14: Manoranjan with Ravi Sharma.

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। और भाई ये स्वागत हम चिंतन के साथ करते हैं आपका। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। अभी ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं और ये समय है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और बहनों भाइयों, चिंतन में शामिल करने के लिए विचार हमें हमारे श्रोता भेजते हैं, हमें याद दिलाते हैं, कभी कभार भाई किसी तरीके से वो अपना संदेश हम तक पहुंचाते हैं और हम उसे फिर आप तक आगे बढ़ाते हैं। आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं हिमानी दवे का भेजा आलेख। और हिमानी कहती हैं कि आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं और वो एक संदेश लेके आए हैं। हनुमान जी की कथा के माध्यम से वो सबसे ये कहना चाहते हैं कि भाई अपनी सेहत का, अपने जीवन का, अपने शरीर का ध्यान रखें, तभी आप सेवा कर सकेंगे, मेहनत कर सकेंगे, दुनिया के कामकाज कर सकेंगे। हनुमान जी भाई पहलवानों के क्या कहते हैं, क्या इष्ट होते हैं। शरीर स्वस्थ हो तो आप मस्त हैं। आपने एक चीज देखी होगी, हवाई जहाजों में सुरक्षा नियमों के तहत लिखा होता है कि भाई किसी की मदद करने से पहले अपनी मदद करें, अगर कोई इमरजेंसी हो तो दूसरे की पेटी बांधने से पहले अपनी पेटी बांधें, दूसरे को ऑक्सीजन देने से पहले खुद अपने मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाएं। यानी अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सभी कार्य कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, किसी को लुक आफ्टर कर सकते हैं। अपना ध्यान पहले रखें। तो भाई पहले तो हम हिमानी जी श्री आचार्य पुंडरी गोस्वामी जी महाराज को स्वागतम कहते हैं। और भाई फिर आपका यह संदेश कि हनुमान जी कहते हैं स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। उनकी कथा श्रवण के लिए आपने कहा कि कहां पर है ये, रीचिंग पार्क में, वो जहां पर हमारे नानक राम चढ़ दी कला तिरे पाणे सरबड्डा पला भाई स्लोगन देने वाले परम पूज स्वामी त्रिलोचनदास जी महाराज का डेरा है, तो वहाँ पर ये कथा हो रही है आईवर में रीचिंग स्पार्क 25 नॉर्थ पार्क। तो भाई वहाँ तो आएंगे ही, लेकिन पुंडरीक स्वामी जी कहते हैं कि आप मंदिर जाएं, धर्म स्थानों पर जाएं, तीर्थ व्रत करें, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान करने के लिए पार्क जाएं, खुले स्थान पर जाएं, आप चलें, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। और कुछ लोग उम्र के साथ जो है आलसी हो जाते हैं और ज्यादातर समय घर में बिताते हैं, भाई घर से निकला करें, थोड़ी बहुत देर के लिए वॉक जरूर करें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए और लंबी उम्र के लिए एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं। आप याद दिला रहे हैं कि फौजा सिंह जिनकी आज पुण्यतिथि है, वो वही पिछले दिनों जो 114 बरस की उम्र में फौजा सिंह की डेथ हुई थी, और वो डेथ भी भाई एक्सीडेंट में हो गई, वरना वो व्यक्ति, वो बुजुर्ग, आप बुजुर्ग कहें या उसे नौजवान कहें, फौजा सिंह जो है वो सुबह सुबह पार्क में होते थे, वॉक करते थे, दौड़ते थे। फौजा सिंह भाई, सब तो फौजा सिंह नहीं हो सकते, लेकिन उनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, उन जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं। सब तो हनुमान जी के भक्त नहीं हो सकते, लेकिन भाई हनुमान जी की कथा श्रवण कर सकते हैं, चिंतन उनकी तरह से चिंतन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। याद रखना, ओनली हेल्दी पीपल एंजॉय द हेल्दी लाइफ। और भाई हेल्थ सही है तो पहला सुख निरोगी काया, तो आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते, ना खाना पीना, ना गाना बजाना, ना उछलना कूदना, ना खेलना, ना डांस, ना म्यूजिक, कुछ भी तो अच्छा नहीं लगेगा। जिंदगी जैसे जैसे गुजरती है, उम्र बढ़ती है, अपने आप को उपयोगी महसूस करें और करवाएं।
आप अपनी यूटिलिटी, अपना उपयोग भाई बच्चों के काम आए, परिवार के काम आए, और नहीं तो भाई समाज के काम आए, वॉलंटरी काम में हाथ बटाएं, देखना आप प्रसन्न भी महसूस करेंगे और स्वस्थ भी बने रहेंगे। तो फिर क्या, उम्र कितनी भी हो जाए आप नौजवान बने रहिए।

0: आज का चिंतन, आज का विचार आप सुन रहे थे। आज के चिंतन के लिए आलेख हमें हिमानी दवे ने भिजवाया था और भाई साथ में ये मीठा सा निमंत्रण भी श्री हनुमान जी की कथा के लिए भी। आज मंगलवार है, बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हनुमत कथा जो आज वो करवा रहे हैं तो उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और हम एक बार फिर से स्वागतम कहना चाहते हैं वृंदावन से जो आए हुए हैं श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज को, आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी। तो बहनों भाइयों, चिंतन का संदेश, उठिए, भागिए, दौड़िए, एक्टिविटीज में हिस्सा लीजिए। ये आप संदेश मुझे मेरे गुरुजी ने भी दिया था, कहते थे एक दिन अगर पूजा ना भी कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन शरीर ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसमें जो भगवान विराजमान होते हैं आत्मा स्वरूप, उनकी पूजा जरूर करना, मतलब उनका ध्यान रखना, पार्क में जरूर जाना। और मेरे घर के पीछे भाई वो बड़ा ऑस्ट्रेलिया पार्क देख करके कहने लगे, तुम तो स्वर्ग में रहते हो बेटा, जिसके पास घूमने के लिए, वॉक करने के लिए, दौड़ने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन से भरा इतना बड़ा पार्क हो, वो तो स्वर्ग में निवास करता है। तो भाई और काम छूट जाएं, लेकिन एक्सरसाइज, वॉक, हेल्थ के लिए थोड़ी बहुत एक्टिविटीज जो हैं वो नहीं छूटनी चाहिए। हिमानी, आज के आयोजन के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग चिंतन। और विजया देवे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन के साथ जो गीत आपने सुना, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म अवतार, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में था। इसके साथ ही भाई आज का चिंतन, ये याद दिला दूं पहले कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके, भाई उनका संदेश है, याद दिला रहे हैं कि पैसे अगर आप भारत में अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो आज का रेट हम बताते हैं, अच्छा रेट चल रहा है। इफ़ यू वांट टू सेंड मनी टू इंडिया टू योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स, वन पाउंड कैन गेट यू टुडे 128.05 रुपीस, 128 रुपये और 5 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, किसी भी SBI UK की ब्रांच में जाकर के वहां से भिजवा सकते हैं। यू कैन सेंड वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: ये है Leica Gold, 10:35 AM.
4: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: और साहब आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले के भाई आखिरी 4 मैच बाकी हैं, एक आज खेला जाएगा सेमीफाइनल मुकाबला फ्रांस और स्पेन के बीच, और भाई जिसमें से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी। दूसरा मैच इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच, और भाई फिर होगा फाइनल मुकाबला, लेकिन उससे पहले तीसरे स्थान के लिए भी एक मैच होगा। तो मैच जब होंगे भाई, आज शाम 8 बजे शुरू होगा ये पहला सेमीफाइनल बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, तो हम आपको जोड़े रखेंगे स्कोर के आंकड़ों के साथ, सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क। लेकिन इसके साथ ही एक और बात बता दूँ आपको कि भाई हमारे जो स्पॉन्सरर्स हैं जो ये मैच की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, इनके यहाँ से 15 मिनट का लीगल मशवरा, कानूनी मशवरा, लीगल एडवाइस जो है फ्री अवेलेबल फॉर द पीपल हु कॉल देम एंड मेंशन लाइका। डोंट फॉरगेट टू मेंशन लाइका।
2: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk। This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: जहाँ जिंदगी वहाँ सैक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: आपके सामने एक रेड बटन है, नहीं दबाना।
2: The madness is back, धमाल 4।
3: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
2: Starring Ajay Devgan, Arshad Warsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
4: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
2: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
5: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
6: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
8: सच?
6: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
9: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड।
10: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gama Pa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
12: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
13: Southall Travel, at all protected.
14: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
15: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
15: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
17: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 केजी टिल्डे बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री। मिक्स एंड मैच टिल्डे बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी। दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स। हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ।
18: On this week's Leica Extra podcast episode, we discuss roots and identity with East African Asians.
19: And, you know, also something as important as education, you know, we take for granted because it's a fundamental part of growing up, whereas our parents didn't have that. They built their careers or they got into work what they could. And it was kind of that opening for us that we could do what we want.
18: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Let's return to the biggest hits, back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
20: Hum se sasta kahin nahi mil sakta.
21: Travel Hub.
20: At all protected.
18: Leica. Making summer feel better. On the Leica Radio Network.

0: इसके सिवा कुछ और भी कहना है क्या? हम तो आपके दीवाने, मान लिया भाई दीवाने हैं आप, और मस्ताने भी हैं। हमने और भी कुछ और भी गाने हैं जो हमने सुनवाने हैं, एक ही लाइन को हम दोहराते रहे बैक टू बैक संगीत, बैक टू बैक वर्ड्स।
1: ये है Like a Gold Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

ये स्वादिष्ट गीत सुनवाते सुनाते एक स्वादिष्ट बात भी बताते चले आपको, इंडिया पॉपुलर स्ट्रीट फूड प्लेस बीकानेर वाला इज नाउ ओपन, नाउ ओपन भाई खुल चुका है वेस्ट लंदन में तो, लेकिन कल खुल रहा है ईस्ट लंदन में, यस गैंसिल में, इलफोर्ड में। सेलिब्रेट द ग्रैंड ओपनिंग दिस वेंसडे यानी टुमोरो 15th ऑफ जुलाई फ्रॉम 4 PM विद योर फेवरेट लाइका रेडियो नेटवर्क प्रेजेंटर्स। तो साहब स्वाद का ठिकाना जरूर जाना, वो छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई, चाट्स, बहुत कुछ। 513-519 एड्रेस बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, क्रैनब्रुक रोड इलफर्ड बीकानेर वाला, द लेजेंडरी टेस्ट सिंस 1905। अरे 4 बजे खुलेगा भाई, 4 बजे ओपनिंग है, ग्रैंड ओपनिंग, सवेरे वाली गाड़ी से पहुंच जाओ, ठीक है।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई, गीत संगीत सुनवाते हुए हम आपको कुछ जरूरी बातें बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो खेलों की बात की, फुटबॉल की बात की, वो कहते हैं जी क्रिकेट का जिक्र नहीं करेंगे। कल महिलाओं ने जो मैच जीता भाई, लॉर्ड्स के मैदान में इतिहास रच दिया। लेकिन आज भी तो क्रिकेट हो रहा है और क्रिकेट की बात किए बिना कहते हैं वो खेलों वाली बात पूरी नहीं होती। इंग्लैंड और भारत के बीच वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा है आज। मैं वो T20 वाला तो तजुर्बा भारतीयों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसमें देखते हैं। और टेस्ट मैच में महिलाओं ने तो इतिहास रचा, अब वनडे में क्या होगा। आज बर्मिंघम में खेला जा रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल। भाई इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की है, 37 रन बनाए हैं, कोई विकेट नहीं गंवाया है। 8 ओवर के बाद ये स्थिति है। 50 ओवर्स का वनडे इंटरनेशनल मैच है और स्कोर के आंकड़ों से हम आपको जोड़े रखेंगे। प्रतिभा जी, मुझे क्रिकेट का काफ़ी शौक है, मैं बताता रहूँगा, आप चिंता ना कीजिएगा। भाई एजाज चशम में सुन रहे हैं हमें और गीतों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी हम तक पहुंचाते हैं, थैंक यू भाई एजाज। किशोर पांड्या कहते हैं कल आप लोग आ रहे हैं गैंडसिल में, वो बीकानेर वाला की ओपनिंग हो रही है, तो भाई हम आपको वहाँ स्वागतम कहना चाहते हैं। मोंटी जी और कृष्णा जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं किशोर भाई की ओर से, आनंद पान वाले। तो और भाई बहुत सारे संदेश आए हुए हैं हमारे इस पर स्क्रीन पर। निर्मला जी, अर्जुन जी, चंद्रिका जी, राजीव पटेल, वत्सला, सुनीता शर्मा, रानी स्लो वाली, मम्मी, महेंद्र पटेल, क्रोइडन वाले, नीला चौधरी जी, जैस्मीन, भाई ये वो लोग हैं जो हमारे चिंतन के जिज्ञासु कहें, प्रशंसक कहें। मुमताज मुगल पाकिस्तान में भाई सुनते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। और करसन पिंडोरिया, भरत गंगाराम, हेतल सोलंकी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा। किरण, आपका संदेश

0: फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
2: और लीजिए साहब, लम्फाई के रेट्स में बता रहा हूँ, नोट कीजिए। एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में दे आर गिविंग 128.77 रुपीज, पाकिस्तानी 373.34, श्रीलंकन रुपए 450.73, बांग्लादेशी टकाज 165.49 एंड अफगानी 88.8.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: LIKA
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold. Well, the gold is trading at the rate of... kitna? Kam hua na, huh? 96.74 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
5: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
6: 25? Seriously?
5: Sounds like Ojo time.
6: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
5: Sorry about the wait. How can I help?
6: You can help me celebrate. I won.
7: Feel the fun. Play Ojo.
8: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
9: Ilford, तैयार हो जाइए. Wednesday 15th July, शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला Ilford और पाइए Like Our Radio के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका. साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ. बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंडसिल, इल्फर्ड, IG2-6HA.
10: बीकानेर वाला परंपरा भी,
11: स्वाद भी.
9: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद.
12: London, the wait is over.
13: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
12: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
13: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
12: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
13: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
12: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
14: Haldiram's.
15: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस.
16: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
17: लंदन वालों ध्यान से सुन लो, के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kefurniture.co.uk पर जाएं.
18: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Our line.
11: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
14: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
19: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
20: Sonatours.co.uk, 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: बाहर है प्रॉब्लम, घर में भी है प्रॉब्लम, भाई दो दो क्यों रखी हुई है जरा पूछो इनसे। नहीं ठीक है, घर में प्रॉब्लम है, सबकी होती है भाई। हाँ, आप उसे घर में प्रॉब्लम कहें या घर वाली कहें, पर बाहर भी क्यों रखी हुई है? घर वाली बाहर वाली दो दो प्रॉब्लम्स। यार साहब दो गीत हमने सुनवाए आपको, और बता दूं कि जो पहला गीत था वो हमने फिल्म किससे लिया था, मोहब्बत की ना, महबूब की मेहंदी फिल्म से लिया था। पसंद आ गई है एक काफिर हसीना, उम्र उसकी 16 बरस 6 महीना, देखो कब से काउंट करना शुरू कर रहा है बंदा, 16.5 साल की होगी। और डोंट वरी बी हैप्पी ये गीत था फिल्म तूफान से। तो बैक टू बैक संगीत से घंटे की शुरुआत हुई। दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल आवर ऑफ मनोरंजन प्रोग्राम टुडे। आपको बता दूं कि मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। उसके बाद आपके मेज़बान होंगे बाली ब्रह्म भट्ट। तो लीजिए साहब एक बार फिर से बता दें आपको पाउंड का रेट SBI UK की ओर से।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK offering 128 pounds and 5 pence. Sorry, pounds pence kya? 128 rupees and 5 paisas. 128 rupees 5 paise. They are offering 128.05 rupees for 1 pound. Or whenever you can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply. Achha rate hai, aap paise bhijwa sakte hain Bharat aajkal.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our gold.
3: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
4: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
5: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
3: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
4: Thanks, playtime's over. Mmm. Lovely.
6: Feel the fun. Play Ojo.
5: 18 plus, gamble aware. Sadco.

0: Set Co Food Containers Total Satisfaction.
1: London, the wait is over.
2: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
1: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
2: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
1: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
2: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
1: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
3: Haldiram's.
4: इल्फर्ड तैयार हो जाइए। वेंसडे 15 जुलाई शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला इल्फर्ड और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका। साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ। बीकानेर वाला 513519 क्रैनबुक रोड गैंडसिल इल्फर्ड IG2 6HA।
5: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
4: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद।
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
7: 0208574 8410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: She can't hear you, but danger always hears her coming.
2: Sab dar bhag jaye.
1: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Kher, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas on the 17th of July. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
3: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
5: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
6: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
7: और भाइयों भाइयों, आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं संगीतकार रवि, रवि शर्मा. हाँ, और सच पूछिए तो रवि मुद्गल, यानी ये गोत्र है हमारा, यानी रवि साहब का भी और मेरा भी, और हम दोनों का संबंध भी एक ही एरिया से है, दिल्ली के आसपास जो हरियाणा है वहाँ से. और भाई रवि साहब की जीवनी का जितना मैंने अध्ययन किया और जितनी बातें उनसे की, तो भाई वो राज खुलते गए और पता चला कि हम एक ही ख़ानदान से, एक ही खूनदान से संबंध रखते हैं. हमारी दिलचस्पियाँ एक जैसी, हमारा खान पान, रहन सहन, बोल चाल, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. लेकिन साहब वो महान संगीतकार और हम उनके छोटे से, कहे तुम मेरा बचपन हो, मेरी जवानी हो और मैं तुम्हारा बुढ़ापा. भाई रवि साहब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने गीतों के माध्यम से आज भी जिंदा हैं. और रवि जी न सिर्फ धुने बनाते थे, रवि जी गाते भी थे. सुनवाऊंगा इसी सप्ताह में कोई गीत उनकी आवाज़ में, लेकिन उससे पहले वो गीत लिखते भी थे और ऐसे ऐसे गीत लिखते थे कि कुछ तो लोग कहेंगे. भाई लोगों का काम तो कहना है, औरों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, परवाह मत करो, ऐसी शब्दावली. रवि जी का गीत, रवि जी का संगीत, लता जी की आवाज़.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: रवि साहब की बनाई धुन पर भाई लता जी की आवाज़ आपने सुन ली। अब ये गीत सुनिए, आगे बढ़ते हैं। बता दूं आपको कि रवि इस सप्ताह के आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, तो उनके संगीत पर सवार कई आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, कई गीत गूंजेंगे रवि साहब के म्यूज़िक डायरेक्शन में तैयार हुए। तो इस सप्ताह में जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एंड हियर इज द सॉन्ग नेक्स्ट।

0: महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत आपने सुना भाई। फिल्म का नाम यहाँ लिखा परिवार, अगर ये परिवार है तो संगीत जरूर कल्याण जी आनंद जी का रहा होगा भाई। ये तो जो सामने स्क्रीन पर आंकड़े दिखाई देते हैं लिखा होता है वो पढ़ के बोलते हैं, कुछ अनुभव से बताते हैं। एक बात बताएं आपको, क्रिकेट का जिक्र फिर करने को जी चाहता है, 10 ओवर्स तक इंग्लैंड का कोई विकेट नहीं गिरा था। बता दूं आपको, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया ये वनडे इंटरनेशनल बर्मिंघम में खेला जा रहा है मैच। इंग्लैंड ने टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया और भाई 10 ओवर तक मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा रन उन्होंने बना लिए थे और कोई विकेट नहीं गिरा था। लेकिन इस समय का स्कोर अगर आप सुनना चाहते हैं, 16 ओवर्स के बाद इंग्लैंड हैज़ लॉस्ट 5 विकेट्स एंड दे हैव स्कोर्ड 80 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड। तो इंग्लैंड का स्कोर 16 ओवर्स के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 80 रन है। तो जोड़े रखेंगे हम आपको क्रिकेट से, सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क,
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: ठहरिए भाई, गीत सुनवाने से पहले एक संदेश आ रहा था और वो जो है खुल नहीं रहा था, अभी खुला है। लेकिन बात तो पहले खुल चुकी है, बता दें आपको, इंडियाज पॉपुलर स्ट्रीट फूड प्लेस बीकानेर वाला। ये बीकानेर भाई शहर है, राजस्थान में है ना। हाँ, आप देखिए, अजमेर वाला नहीं, बाड़मेर वाला नहीं, आमेर वाला नहीं, बीकानेर वाला दुनिया भर में मशहूर हो चुका है और लंदन में इसकी पहले भी दूसरे के इलाकों में ब्रांचेस खुल चुकी हैं, लोग स्वाद ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक इनकी भाई फूड्स का स्वाद नहीं चखा है तो बता दें, कल इल्फड़ में गैंट सिल में ओपनिंग हो रही है और शाम 4 बजे से भाई द्वार खुलेंगे, वहाँ पहुँचिएगा। कल वेंसडे 15 जुलाई को फ्रॉम 4 PM विद योर फेवरेट लाइका रेडियो प्रेजेंटर्स, वहाँ पर बड़ी धूमधाम से बीकानेर वाला का नया स्टोर खुल रहा है। टेस्ट फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई, चाट्स एंड मोर एट बीकानेर वाला इल्फड़। भाई एक बात बता, ये जो राज कचौरी इनकी बहुत ही, एक तो काफ़ी अच्छे साइज में है, जैसे एक कचौरी खा के ही पेट भर लो जाए, लेकिन दूसरा ये इसका स्वाद कुछ बड़ा अनोखा है। सचमुच में राज कचौरी लगती है, राजस्थान की कचौरी कहें या राज परिवार की या शाही परिवार की भाई स्वीट डिश कहें, मीठी डिश भी, नमकीन डिश भी, चाट्स। तो एड्रेस बता रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए, 513-519 क्रैनब्रुक रोड, इल्फड़, IG2-6HA, बीकानेर वाला। 1905 से लोगों के स्वाद की चर्चा का विषय बने हुए हैं। आइए वादा करें, कल मिलने का इरादा करें इल्फड़ में।

आप संगीतकार रोशन पर कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं? बोले हाँ, आज याद है मुझे कि आज रोशन जी का जन्मदिन है, लेकिन आज मदन मोहन जी की पुण्यतिथि भी है। मैं महान संगीतकार मदन मोहन, लता जी कहती है मैं उन्हें मदन भैया कहती थी, और मदन मोहन की बनाई धुने भी कुछ हटके हैं भाई भाइयों। कोई गीत उठा लो दिल पर, वो क्या कहते हैं कि लिखा जाएगा आपके दिल पर, जिससे कोई पत्थर पर कुरेद दिया गया हो ना, ऐसे परमानेंटली स्टे करेगा मदन जी की बनाई धुनों पर सवार कोई भी गीत। रफ़ी साहब की आवाज़ में कई गीत उन्होंने अमर किए, उनमें से एक गीत ये भी था, मदन मोहन, मदन मोहन कोहली पूरा नाम। उनके परिवार के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं बाली भाई बताएंगे, लेकिन मदन चले गए, धुने आज भी शाश्वत हैं।

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
2: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
1: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
2: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
1: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
2: Visit Kajal's Couture.
3: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
4: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
3: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: भाइयों बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में इंडियाज फेमस छोले भटूरे, अ मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंडसू, इल्फर्ड, IG2-6HA, बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड।
8: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

ऐसे गीतों को भाई न पढ़ने की जरूरत न लिखने की जरूरत, ही याद हो जाते थे सुन के ही। अब इतने पुराने गीत लेकिन साहब शब्दावली देखिए, चले ये मुबारक जश्न दोस्ती का। दिल का किसको गम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है।

0: पीते पिलाते ही रहने की रात आई। भाई आज मदन मोहन जी को भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे, संगीतकार रोशन जिनका भाई जन्मदिन है, उनकी बनाई धुन, ये उन्हीं की बनाई धुन सुनवा रहा हूँ मैं आपको। और अब जा रहा हूँ आपसे इजाज़त लेके, जाते जाते बता दूँ मिलिंद गुणा जी उनका भी आज जन्मदिन है। सुधा शिवपुरी माँ के रोल में बहुत फिल्मों में देखा होगा इन्होंने, इन्हें आपने, तो उनका भी जन्मदिन आज ही पड़ता है। 1937 में जन्मी थी।
1: यार मत जा,
0: जाना पड़ेगा यार, जाना पड़ेगा
1: यार, मत जा,
0: देख जाना पड़ेगा। सोनू भाई मत रोक मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको, अगली मुलाकात कल होगी 10 बजे की खबरों के बाद। रवि शर्मा को अनुमति दी।

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, एवरग्रीन कवाली हम ट्रिब्यूट तो करते हैं जिनका सालों साल और महीनों महीनों हम ये जब भी प्ले करते हैं तो इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं। हम याद कर रहे हैं रोशन लाल नागरथ को। जी हाँ, 14 जुलाई 1917 बॉर्न इन गुजरनवाला पंजाब, 109th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रोशन लाल नागरथ, एन एसराज प्लेयर, कंपोजर, हारमोनियम प्लेयर एंड साथ साथ में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी वो बजाना जानते थे जैसे कि सरोद। अब देखा जाए तो बचपन से ही इन्होंने तालीम शुरू कर दी थी। देखा जाए तो मैरिस कॉलेज इन लखनऊ, वहाँ पे पंडित रतन जांकर, ही वॉज द प्रिंसिपल, ही गॉट ट्रेनिंग अंडर हिम एंड देन ही लर्नड हाउ टू प्ले सरोद थ्रू अलाउद्दीन खान ऑफ मैहर घराना एंड देन ऑल इंडिया रेडियो में वो स्टाफ आर्टिस्ट बन गए फॉर एसराज प्ले करने के लिए। 1940 से लेकर आई थिंक इट वॉज 1940 to 1948 ही स्टार्टेड प्लेइंग एसराज फॉर ऑल इंडिया रेडियो। देन ही क्विट द जॉब फॉर फेम एंड फॉर्च्यून। कहाँ पे? बम्बई नगरी। दैट्स राइट, ही डिसाइडेड टू गो टू बॉम्बे 1948। एंड देन ख्वाजा खुर्शीद अनवर जी, जिन्होंने उनको ऑल इंडिया रेडियो में भी चांस दिया था, उन्होंने उनको असिस्टेंट रख लिया इन द फिल्म सिंगार 1949 की। एंड उसके बाद केदार शर्मा, उन्होंने एक फिल्म का चांस दिया इनको एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि खुर्शीद, ख्वाजा खुर्शीद अनवर जी ने तो उनको असिस्टेंट बनाया था उस फिल्म में सिंगार में। इसमें उनको म्यूजिक डायरेक्शन का चांस मिला केदार शर्मा जी 1949। कुछ खास नहीं चली फिल्म। देन बावरे नैन, वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई 1950 की। वहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ। फिर तो मल्हार फिल्म, क्या गाना है उसका, मुकेश जी का मैं सुनाऊँगा आपको। देन शीशम, फिर अनहोनी 1952 की, नौबहार 1952 में। नौबहार फिल्म में एक भजन था, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, वो लता जी को उन्होंने गवाया तो वो भी सुपर डुपर हिट हो गया। अब आगे तो मैं बोलता ही जाऊंगा क्योंकि अवार्ड मिला था इनको ताजमहल के लिए। फिर 35 फिल्में, 19 साल में 35 फिल्में की इन्होंने। What a major achievement! 1948 से लेकर 1967 तक इन्होंने 35 फिल्में की। And he during the last years, 16th of November 1967 तक, he had a chronic heart trouble for 20 years, 20 साल तक, मतलब 30 साल की उम्र से 50 तक इनको छोटा प्रॉब्लम तो हुआ ही था, लेकिन बढ़ता गया। एंड देन ही हैड अ हार्ट अटैक इन मुंबई वाइल अटेंडिंग अ सोशल गैदरिंग ऑन 16th नवंबर 1967 एट द एज ऑफ 50, सच ए यंग एज। वी आर रिमेंबरिंग रोशन लाल नागरथ दिस आवर। उनकी कवालियां हैं तो कवाली के मूड में, बाद में जब इनकी कवाली पूरी हो जाएगी तो मैं दो कवाली और दे देता हूँ जो इनकी म्यूज़िक की नहीं थी। इनका म्यूज़िक मतलब इट वाज नॉट हिज कंपोजिशन, दूसरे थे, लेकिन इस आवर में सिर्फ कवालियाँ होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट आवर में रोशन लाल नागरथ के मशहूर गाने सुनते जाएंगे और लुत्फ उठाएंगे। आगे सरप्राइज है और भी, सुनते जाइएगा। मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com। ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप एंड इट्स द 371st डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स। एंड सैंडी शाह विल बी कमिंग एट 4 PM हियर एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स इट्स गोना बी राज पतन।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to £128.05 Indian rupees to a £1 in British sterling. I corrected myself there. £1 in British sterling can get you up to 128.05 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
4: 25? Seriously?
3: Sounds like Ojo time.
4: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
3: Sorry about the wait. How can I help?
4: You can help me celebrate. I won!
5: Feel the fun. Play Ojo.
6: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
7: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak. World class cuisine se हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग. रागासन.
8: हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द फैमिली? इन टाइम्स ऑफ सैडनेस एंड ग्रीफ, ओम फ्यूनरल केयर इज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट विद ऑल कस्टम्स एंड रिचुअल्स. एट कैंटन रोड इन वेस्ट लंदन एंड इलफर्ड इन East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line. Start your

0: 5 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
1: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
2: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

0: आपने गाने सुने जो दिल को खुश कर देते हैं। फिल्म भीगी रात 1965 का और 1962 फिल्म आरती, जो मेरा फेवरेट गाना जो दिल जो ना कह सका, जो लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और इतनी बेहतरीन अदा से रोशन जी ने इसको कंपोज़ किया। अब स्टोरी तो आप सबको मालूम ही है इनके बारे में, सो मैं आगे बढ़ता हूँ और गाने सुनाता रहूँगा। एंड इन द थर्ड आवर वी शैल बी रिमेम्बरिंग अनदर ग्रेट नेम। द ग्रेट नेम हैपन्स टू बी नन अदर देन मदन मोहन जी। मदन मोहन जी पास्ड अवे ऑन 14 जुलाई 1975, सो इट्स 51st डेथ एनिवर्सरी यू कैन कॉल इट। एंड We shall play a couple of songs because हमने उनका ट्रिब्यूट किया था जून में, so it was very recently that we had done his full tribute of 2 hours. तो आज मैं कुछ चंद गाने सुनाऊंगा जो they are offbeat songs. सुनते रहिएगा एंड लुत्फ उठाते रहिएगा। मैं हूँ बाली ब्रह्मबर ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home and likeagold.com, also available on radio player app. And aage dusra jo gana aane wala hai, that is sung by Lata Mangeshkar ji and Mukesh ji. Are bada maza aayega aapko, sunte rahiyega.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.05 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: Ah, we got FIFA World Cup 2026. We are into semi-finals, and 8 p.m. tonight is going to be France versus Spain in Dallas. And tomorrow is going to be 8 p.m. England versus Argentina in Atlanta. And then on 18th of July, that is Saturday, there's going to be a third place playoff from Miami. And of course, we'll know the teams later on. And the final on Sunday, 19th July. Jude rahiyega for scores. And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
4: Aapke samne ek red button hai. नहीं दबाना था।
5: The madness is back. Dhamal 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
5: Watch the biggest family entertainer Dhamal 4 in cinemas now.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situations में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।
9: चलो जाइए एक नवा सफर पर
10: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार आणि दार एस सलाम साथे जिंजा आणि मचिसन फॉल्स।
11: बस पैक करो आणि रिलैक्स थई जाओ,
10: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
11: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
10: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
12: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
11: Relax.
12: I've booked the Uber already.
13: How? My roaming isn't even working yet.
12: I switched to Simzy before we left London.
13: Simzy? Since when are you the tech expert?
12: Since I decided I want a stress-free holiday.
14: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
15: T's and C's apply.
16: इल्फर्ड तैयार हो जाइए। वेंसडे 15 जुलाई शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला इल्फर्ड और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका। साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ। बीकानेर वाला 513519 क्रैनबुक रोड गेंट सिल इल्फर्ड IG2 6HA।
17: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
16: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद।
18: Kajal's Couture for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
19: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
18: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
19: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
18: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
19: Visit Kajal's Couture .co.uk।
20: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर furniture.co.uk पर जाएं।
21: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन लें 0208-907-2444।
22: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
23: Minar Jewelers Best Overall Business of Wandsworth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208-767-7547.
24: Come on, England. Roar it. Score it. Bring the World Cup home. All the best to England from Leica Radio Network. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
25: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: फिल्म नौबहार. एंड द लिरिक्स आर बाय शैलेंद्र. एंड रोशन जी ने जब ये भजन 1952 में फिल्म नौबहार के लिए जब कंपोज किया, सो लोगों को इनकी इनके नाम की जानकारी हुई, पता चला कि हाँ कोई है कंपोज करने वाला, तो ये भजन बड़ा हिट हुआ था. एंड लता मंगेशकर जी ऑलवेज सैंग इट ऑन स्टेज एज वेल. सो ये गाना लाइका गोल्ड पे लास्ट सुनाई दिया गया था 20th of December 2024, मतलब 2024 में ये गाना बजा था. मतलब डेढ़ साल के बाद मैंने इसको सुनाया.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.3411, Indian rupees 128.87, Pakistani rupees 372.66, Afghanis 89.17 and Kenyan shillings 173.42.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi.

0: खून का।
1: फिल्म ताजमहल। उम्मीद है आपको पसंद आया हो ये ट्रिब्यूट रोशनलाल नागरथ का, क्योंकि आइडिया था ये दिखाने का कि इनकी वर्सेटिलिटी कैसी थी। मतलब के स्लो चटपटे गाने, कवालीज और इनकी मेलोडीज विच विल ऑलवेज बी एवरग्रीन। लाइका गोल्ड पे तो हमेशा इनके गाने बजते ही रहेंगे।
2: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
1: रहे ना रहे हम वही ट्यून में पहली बार ये गाना था। फिल्म थी चांदनी चौक 1954 की, जो आशा भोसले जी ने गाई थी। फिर लता मंगेशकर ने फिल्म ममता में गाया था रहे ना रहे हम। सुनिएगा, सेम ट्यून है। मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स।

मान गए ना. एंड वो ममता में जो गाना जो था रहे ना रहे हम, वो भी हमारे मशहूर राइटर मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था. एंड लुक एट कॉफी हाउस का ये गाना गीता दत्त ने जो गाया था और रोशन जी ने कंपोज किया था. जैसी सिचुएशन वैसा वो कंपोज करके देते थे. और ये गाना भी सुनो, बड़ा मजा आएगा आपको.

0: कितनी खूबसूरत कवाली है ना, हमें लगे कि बस थोड़ा और गा लेते तो बड़ा मजा आता। लेकिन अब कुछ खबरें देनी है आपको। खबरें ये हैं, इंडियाज पॉपुलर स्ट्रीट फूड प्लेस बीकानेर वाला इज नाउ ओपन इन गैंट्स हिल इलफर्ड। सेलिब्रेट द ग्रैंड ओपनिंग दिस वेंसडे 15 जुलाई फ्रॉम 4 पीएम विद योर फेवरेट लाइका रेडियो नेटवर्क प्रेजेंटर्स एंड आई विल बी देयर टू। यू नो टेस्ट फेमस छोले भटूरे, राज कचोरी, मिठाई, चाट्स and more at Bikaner Wala, Ilford, 513-519 Cranbrook Road, IG26HA, Bikaner Wala, the legendary taste since 1905. Leica
1: Gold. The Leica Radio Network, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.
2: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pal, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
5: Okay, Laura, from the top.
6: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy, and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead with Barclays Premier. With personalized financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
6: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
7: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
8: एट ब्रेस्ट कैंसर नाउ, वी नो चेकिंग योर ब्रेस्ट कैन फील डॉन्टिंग, बट इट्स एज सिंपल एज TLC। टच, लुक, चेक. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
9: Have you noticed the way fans shout at football matches?
10: Oh, wake up!
9: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
11: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
12: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

बालक साहब के साथ कौन सा डुएट गाया पहले वो याद नहीं, पर बहुत सारे डुएट्स गए और अनिल दा के यहाँ आके वो बैठते थे। पर तलत साहब का नाम हमने पहले रेडियो पे सुने थे ना, चूँकि वो कलकत्ता में जब वो गाने गाते थे और हम लोग बड़े इनके फैन थे।

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
2: Gajal's Couture. For every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
3: Discover Gajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
3: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Gajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect.
3: विजिट gajalscouture.co.uk।
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
4: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
6: Minar Jewelers, Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026. Come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208-767-7547.
7: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts. Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
8: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: चलो जाइए एक नवा सफर पर
4: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
5: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
4: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
5: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
4: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
6: आर यू सिटिंग ऑन अ मॉर्गेज एंड गेटिंग नथिंग बैक व्हाट इफ योर रीमॉर्गेज पेड यू
7: एट कैशबैक रीमॉर्गेजेस We find you deals that put real money back in your pocket.

0: She can't hear you, but danger always hears her coming.
1: Sab dar bhag jaye.
0: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Kher, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas on the 17th of July. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: विल नहीं है ये रिज आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208907244। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208907244।
4: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री। मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीज, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी। दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स। हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ।
5: Like Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is Sandy Shah on Gold Drive.
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
7: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on the breakfast show where I take you down memory lane. Get inspired by morning mantra Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Laika Gold and Laika Radio Nidjans.

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: London, the wait is over.
3: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
2: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
3: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
2: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
3: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
2: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
4: Haldiram's.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Power line.
1: Eviction? Tenant dispute? Property ka masla? Kenton Solicitors London landlords or tenants ke liye fast action lete hain aur residential or commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call karein 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
6: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री। मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी। दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स। हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ।
7: कम ऑन इंग्लैंड, रोर इट, स्कोर इट, ब्रिंग द वर्ल्ड कप होम। ऑल द बेस्ट टू इंग्लैंड फ्रॉम लाइका Network. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Asia Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
2: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे. कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारिसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स.
3: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ.
2: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे. वधु माहिती माटे
3: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
2: 01162662481 पर. वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर.
4: London, the wait is over.
5: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
4: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
5: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
4: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
5: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
4: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
6: Haldiram's.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
8: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
7: डेजर्ट सफारी,
8: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
7: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
8: तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410. साउथ हॉल ट्रेवल.
9: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
9: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
11: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 02089072444. दैट्स 02089072444.
12: Minar Jewelers Best Independent Retailer 2026. Come and find out why. Best jewelry for the bride and groom. Phone 0208-767-7547.
13: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
14: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लवली जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। टेरिफिक ट्यूसडे के लिए तैयार हैं आप सब, आई एम श्योर, बिकॉज अब मौसम जो है सुहाना हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा आएगी, नहीं आई तो आएगी, और अगर नहीं है तो फैन की ठंडी हवा है ना। बिल्कुल, टेम्परेचर्स बड़े अच्छे होने वाले हैं, और या आई मीन आई थिंक वी ऑल आर इन मच बेटर मूड, बिकॉज अब धीरे धीरे जो धूप का एहसास कम होगा वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। शाम में रात होते होते तो टेम्परेचर्स बड़े अच्छे हो जाते हैं। पूछें आप सबसे, कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना, होंगे ही। देखिए ट्यूसडे का सेकेंड डे, ट्यूसडे का सेकेंड डे नहीं, वीक का सेकेंड डे ट्यूसडे निकल गया, आप घर पे पहुंच गए, किचन में खड़े होके कॉफ़ी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सोफे पे बैठ के फुटबॉल देखेंगे कुछ देर में, या फिर और भी मैचेस देखेंगे, लेकिन शो नहीं मिस करना है ना। ये जो आपने नियम बनाया ना, एक तो पहले खुद को शाबाशी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बड़ी अच्छी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं आप। जी, आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस शुरू हो चुके हैं, अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आप लोग अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। जी आइए, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने काफ़ी डांस मस्ती करते हुए अभी इस शो का जो आगाज़ हमने दो गीतों के साथ में किया उसे काफ़ी इंजॉय किया होगा। पहला गीत हमने लिया था राजा हिंदुस्तानी से, विच वॉज रिलीज इन 1996। पूछो जरा पूछो, किसी ने लिखे कहा कि आप कुछ पूछना मत, बस गाने सुनाओ, तो अरे बिल्कुल जो हुकुम। एंड सेकेंड वॉज जय जय शिव शंकर। इस गाने की एनर्जी मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब आई जस्ट गो विद द फ्लो, और बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे इस गीत को। बहुत अच्छी और प्यारी मेलोडियस प्लेलिस्ट आप सबके लिए यहाँ पे लगा रखी है, तो ज़रूर अपने कामों की तरफ भी ध्यान देते चलिए और हमें भी सुनते चलिए। हमेशा की तरह एक सवाल पूछेगी अश्विनी, बिल्कुल, एंड किसी लाइफ थ्योरी पे बात करें, चलिए देखते हैं, सोचते हैं आज का सवाल। तो हम सभी बचपन से कोई ना कोई कोट्स सुनते आ रहे हैं, कोई ना कोई दोहे सुनते आ रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे बचपन में वे देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, है ना, ये सारी चीज़ें जो इस टाइप के कुछ तो कोट्स हम सुनते रहे हैं कि वन स्पून ऑफ समथिंग समथिंग विल नॉट मेक यू अनहेल्दी, देयर आर सो मेनी। एनीवेज, मैं इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि आप लोगों को अपने अपने कोट्स लिख के मुझे भेजने हैं। फॉर मी व्हाट एक्चुअली वर्क्स फॉर मी, एंड ये कोट ना मेरी मम्मी बहुत सुनाती थी, दैट वॉज कबीर जी का, ये दोहा है, एक्चुअली कोट नहीं दोहा है, कोट भी समझ सकते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आप तो मुझसा बुरा ना कोई। लाइक दूसरों को मैं कहाँ कुछ बोलने चली जाऊँ, मैं पहले खुद को तो देख लूँ कि मैं कैसी हूँ, दूसरों को कहूँ कि अरे कहाँ बुरा देख रहे हो, उनको प्रवचन दूँ, उसके पहले लेट मी इंट्रोस्पेक्ट। एंड ये कहावत या ये जो दोहा है बचपन से मैं सुनते आई थी, और अभी तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है कि नहीं, पहले अपने आप पे काम किया जाए और फिर दूसरों को ज्ञान दिया जाए। ऐसी कोई भी कहावत जो आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे, सुनाते होंगे, दो ही सुनाते होंगे, और जिसका प्रभाव आपके ऊपर काफ़ी रहा है, अगर बताना चाहते ज़रूर बताइएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपी और 40 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply. This is Leica Gold.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 7:33, 7:33। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। हर रोज हम किसी न किसी लाइफ थियोरी पे बात करते हैं और आज की लाइफ थियोरी जो है इंटरेस्टिंग है, छोटी सी है लेकिन आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगी। द चीप शो थियोरी। एक इंसान शॉप पे जाता है, वहाँ जाके शूज़ देखता है तो 3,000 के शूज़, वो कहता है मेरा इतना बजट नहीं है, मैं तो 500 वाला एक कोई शूज़ उठा लेता हूँ। तो 500 रुपये का शूज़ लेता है, वो उसका शूज़ चलता है 6 महीने, फिर उसके बाद में फिर जाता है, फिर 500 रुपये का नया, फिर 6 महीने, ऐसे वो हमेशा करते रहता है। उसने सबसे पहला शूज़ जो हाथ में लिया था उसकी कीमत थी 3,000 रुपये। उसने सोचा इतने पैसे मैं एकदम कहाँ डालूं, जब जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे मैं ले लिया करूंगा। छोटी सी थियरी है लेकिन काफी रिलेटेड है हमारी लाइफ पे कि भाई महंगी चीज क्यों नहीं ली उसने, एक बार की 3,000 रुपये डाल दिए था, है ना, और बार बार उसे शूज लेने की जरूरत ना पड़ती। आप और हम यही सोच रहे हैं लेकिन क्या ये थियरी हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं जब हम रिश्तों को चुनते हैं? जी हाँ, कई बार ऐसे होता है कि बस हमें दोस्त चाहिए, हमें फ्रेंड्स चाहिए, हमें कोई अपना एक बिग टीम चाहिए, तो इसलिए हम लोगों का चुनाव करते रहते हैं जो मीठा बोल देते हैं और जो अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। लेकिन जब भी किसी रिश्ते में जाए उसे परख के लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, क्योंकि जिस क्वालिटी के लोग आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं अगर वैसे लोग नहीं मिल रहे हैं तो इट्स ओके टू बी अलोन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आपको आपकी जो सेम थॉट प्रोसेस है, लाइक माइंडेड लोग अगर नहीं मिल रहे हैं, रुक जाइए, मिल जाएंगे, ढूंढते रहिए, क्योंकि आप अपने आप को उन लोगों के साथ में बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे अगर दूसरे लोगों का और आपका सोचना सेम नहीं है। द चीप शो थियरी यही सिखाती है कि थोड़ा महंगा लीजिए, थोड़ी क्वालिटी ले लीजिए, लेकिन जब भी चुनाव करें तब सोच समझ कर और अच्छे से चुनाव करें। अब कौन सा शो लेना है या कौन सा रिश्ता बनाना है ये आप सोचेंगे, क्योंकि लाइफ है आपकी, डिसीजन है आपका। कैसी लगी ये थियरी ज़रूर बताइएगा। और अब अगला गीत जो मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ, यादों की बारात से गीता दत्त की आवाज़ में, बाबूजी धीरे चलना।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. The Evening Show with Ashwini.

0: all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: Kajal's Couture for every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
4: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
3: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
4: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
3: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
4: Visit kajalskachor.co.uk.
1: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 48 मिनट्स पास्ट 7, 14th ऑफ जुलाई ट्यूसडे, और आप और हम साथ मिलकर मनाते हैं टेरिफिक ट्यूसडे। सो टेरिफिक ट्यूसडे सेकेंड आवर में मनाएंगे हम, फर्स्ट आवर में यादों की बारात। एंड आपको जो गीत हमने सुनाया था, ये मौसम रंगीन समा, मुकेश जी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में मॉडर्न गर्ल से लिया था ये गीत। ओके, सो फिलहाल आई एम वॉचिंग दिस सीरीज कॉल जिला चिकित्सालय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज दैट जिला चिकित्सालय, चिकित्सालय, इट्स ऑन अमेजन प्राइम। एंड आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ सीरीज। आई हैव वॉच्ड गुल्लक, TVF की सीरीज जो होती है, बहुत बेहतरीन, बहुत पारिवारिक ये सीरीज होती है। और जिला चिकित्सालय में इट्स ऑल अबाउट हाउ एक PHC है, एक जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं या सरकारी दवाखाना जिसे हम कहते हैं चिकित्सालय, वहाँ की ये स्टोरी है। और बहुत प्यारी स्टोरी है, गांव, कभी कभी गांव का इनोसेंस। एंड जो कलाकार इन्होंने चूज़ किया ना, कास्टिंग जो है वो बहुत बढ़िया हुई है। सो इसका सीज़न 1 भी आ चुका था, वो भी हमने देखा था। एंड ये भी अभी जो सीज़न है इसको देख रहे हैं, और उसमें कुछ कैरेक्टर्स इन्होंने मैच कर लिए। और एक दूसरी सीरीज, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, लेकिन या बहुत अमेजिंग और बड़ी प्यारी पारिवारिक और बड़ी क्लीन सीरीज़ हैं, जिनको देख के ना आप मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, देखिएगा ये सीरीज़। एंड मुझे फिर बताइएगा कल परसों, अब तो पूरा सप्ताह हम लोग साथ में हैं, तो आप बताइएगा कि जब भी आपकी सीरीज़ देख के हो जाए कि अरे अश्विनी जी मज़ा तो आया था इसमें, है ना। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप लोग जो हैं ज़िंदगी में खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत सारे लोगों को आज की चीप शू थियरी बहुत पसंद आई है, जो हमने बेसिस लिया था शू थियरी का। एंड फिर हमने रिश्तों के बारे में बात की। आई एम सो ग्लैड दैट यू ऑल आर लविंग द थियरी स्पेशली। एंड जो हमारे साइलेंट लिसनर्स हैं ना, उनके भी फटाफट मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि अरे वी जस्ट लव दिस थियरी। सो साइलेंट लिसनर्स जी, भाई साहब आप, जी दीदी आप, मुस्कुरा रहे हो, एक मैसेज कर सकते हैं, इसी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो ज़रूर मैसेज करते चलिए। आखिरी गीत, ओए होए होए होए, ए वॉल्यूम अब पक्का चाहिए इसमें तो। कलाकार फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में, सोचो आप, सोचो कि मैं इतना खुश होकर क्यों कह रही हूँ कि वॉल्यूम अब तो चाहिए ही चाहिए, नीले नीले अंबर पे, है ना। फर्स्ट आवर का ये आखिरी गीत है, इसके बाद हम लोग इस म्यूज़िकल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, दो और घंटे साथ में हैं। फिर सेकेंड आवर में मनाते हैं हम इमोशन ऑफ द डे, एंड लास्ट इस गज़ल या कव्वाली में क्या सुनाने वाली। फिलहाल नीले नीले अंबर पे, दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. आप और हम साथ मिलकर मना रहे हैं टेरिफिक ट्यूसडे ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. पहला आवर टाटा बाय बाय, सेकेंड आवर आप और हम इस सफर में बढ़ रहे हैं आगे. बहुत ही बेहतरीन गीतों के साथ में इस आवर का आगाज हमने किया. यस बॉस से मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, पूरा मस्का वाला गाना है ना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा ना, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं प्यार जो जगाऊं अगर तुम कहो. अगर भाई तुम्हारी बीवी कहे कि तुम सब्जी काट दो तो काट दो, इतने चांद सितारे और क्यों लेके आ रहे हो. एंड सेकेंड इज माई फेवरेट ट्रैक रॉकी फिल्म से सुनाया हम तुमसे मिले. कितना मेलोडियस गीत है ना ये. ओके, जितने भी बाकी के गीत लगा रखे हैं वो सारे के सारे मेलोडियस हैं. एंड यस, मैंने फर्स्ट आवर में आप सबसे पूछा था कि कौन सी ऐसी कहावतें हैं, दोहे हैं, कोट्स हैं जिन्हें सुन के आप बड़े हुए हैं और उसका इफेक्ट आप पे है. सभी ने बिल्कुल इतने सारे जो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और हमारे मम्मी ये कहती थी जहाँ चाहा वहाँ रहा, ऑल दोस हिंदी मराठी सारे इंग्लिश सब के सब मुझे कहावतें लिख के भेजी हैं. एंड एवरीबडी वाज स्माइलिंग सेइंग अरे मेरे पापा ये कहते थे, मेरी मम्मी ये कहती थी. चले कहते ना बचपन में, क्या आप भी कोई कहावतें यूज़ करते हैं? आई डाउट रियली, क्योंकि इतना सबको याद रहता होगा. एनीवेज, सो लाइफ थियरी के वीडियोस मैं रोज़ एक लाइफ थियरी थियरी यहाँ सुनाती हूँ, और उसका वीडियो जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ. मेरा इंस्टाग्राम है रेडियो वाली अश्विनी, तो वहाँ पे आपको रोज़ जो थियरीज यहाँ सुनाई जाती है उसका वीडियो देखने मिल जाएगा. अच्छा जी, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो दो ऐसी ओकेजन्स हैं, दो ऐसी इवेंट्स हैं जहाँ पे आप और हम मिल सकते हैं. तो बीकानेर वाला इनका जो एक ब्रांच है, इट विल बी इन गैंसिल, कल खुल रहा है. ग्रैंड ओपनिंग इज़ ऑन वेंसडे 15, यानी कि कल शाम 4 बजे. और हमारी लाइका रेडियो की पूरी टीम वहाँ पे रहने वाला है, पूरा एक जमावड़ा रहने वाला है. सारे आपके फेवरेट प्रेजेंटर्स आपको मिलने वाले हैं. सो यहाँ पे आप मिलेंगे बाली ब्रह्मभट जी से, रवि शर्मा जी, रूबी रजा, डॉनी ब्रास्को, विश भटनाकर, ऋतु शर्मा, अलका शाह, हमारी पड़ोसन रेडियो वाली, मुझे भी आप वहाँ मिल सकते हैं कल, अनुज राठिया, सरिता सबरवाल, सोनिया सिंह एंड हमारे कैम सावलिया. तो ये देखिए कितने सारे, मतलब सोचिए कि पूरा लाइका रेडियो का टीम जो है वहाँ पे आपको कल मिलने वाला है. इसके अलावा इसी सप्ताह मैं आपको और एक इवेंट पे मिलने वाली हूँ, उसके बारे में बताऊंगी बस कुछ ही देर में.
1: London's biggest classics all day. Leica Gold. Competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आपका एक पाउंड आपको दिला सकता है 128 इंडियन रुपी एंड 40 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है लाइका गोल्ड.

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

0: Full Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: So, France and Spain के बीच में गेम शुरू हो चुका है 23 minutes और Spain ने दागा है एक गोल. So, याद रखिए कि you get your 15 minutes of free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Laika.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: आठ बज के 23 मिनट, इट्स 23 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. अच्छा जी, अगर आपके घर में टीनेजर्स हैं और वो अगर आपकी आवाज़ें सुन के उसे कम्प्लीटली डिसमिस करते हैं, या कहावत है ना एक, कानों पे जुए तक न गरेना. नहीं, जुओं का ज़माना नहीं रहा डेफिनेटली, लेकिन तवज्जो ना देना अगर आपने कुछ कहा हो तो. दे डोंट पे एनी अटेंशन, दे जस्ट सीम टू बी लाइक हमने तो सुना ही नहीं, आपने आवाज़ लगाई थी. सो चिल्ड्रंस ब्रेन स्टार्ट ट्यूनिंग आउट देयर मदर्स वॉइस अराउंड द एज ऑफ 13. आज केवल मैं ही नहीं, आपको भी आपके आंसर्स मिलने वाले हैं. सो व्हेन योर टीनेजर्स डोंट सीम टू हियर यू, इट्स नॉट सिंपली दैट दे डोंट वांट टू क्लीन देयर रूम्स और फिनिश देयर होमवर्क. देयर ब्रेन्स आरंट रजिस्टरिंग योर वॉइस द वे दे डिड इन प्री टीनेज ईयर्स में मम्मी जो कहे, मम्मी की मिट्टी मिट्टी आवाज़, सुमधुर आवाज़ उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी, बड़े प्रोटेक्टिव लगती थी. लेकिन बाद में द रिसर्च विच वॉज पब्लिश इन अप्रैल दिस ईयर इन जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस यूज फंक्शनल MRI ब्रेन, और इसमें डिटेल में यही बताया गया कि जब बच्चे छोटे हैं तो माँ की आवाज़ उन्हें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्रोटेक्टिव लगती है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको वेराइटी ऑफ वॉइस अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं माँ की जो आवाज़ है वो चुभने लगती हैं, तो उनके ज़िंदगी में उनके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने लगते हैं और वहीं माँ की आवाज़ जो है उनसे वो दूर जाते रहते हैं. वो कुछ जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि दे गेट कंडीशन दैट वे बिकॉज उनका ब्रेन कह रहा है कि नहीं नहीं, मम्मी की आवाज़ ना सुनो, बाहर की आवाज़ें सुनो, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. ओके चलो, आई गॉट माई आंसर टूडे. आपके यहाँ पे भी अगर टीनेजर्स हैं तो वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, सीरियसली जिन्होंने रिसर्च की. आइए जरा सर मैडम, मेरे भी कई सवाल है, पूछती हूँ.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Look at you. The future is unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
0: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
6: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
5: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
7: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना.
8: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
9: भाइयों बहनों खुशखबरी 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में इंडियाज फेमस छोले भटूरे अब मैच मेड इन हेवन फैमिली को लाओ फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड गैंडसू इल्फर्ड IG2-6HA बीकानेर वाला नाउ इन इल्फर्ड
10: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627
11: कम ऑन इंग्लैंड रोर इट स्कोर इट ब्रिंग द वर्ल्ड कप होम ऑल द बेस्ट टू इंग्लैंड फ्रॉम लाइका रेडियो नेटवर्क फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: 10:35 AM.
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
1: पॉडकास्ट एपिसोड 24 आ चुका है। ईस्ट अफ्रीकन एशियंस एन एपिसोड शेड्स लाइट ऑन द रूट्स एंड आइडेंटिटी एंड जर्नी ऑफ अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन एशियंस लाइक आ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई यूट्यूब अमेजन एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। भाई मैं बिल्कुल भी आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करूंगी अगर आप बैक टू बैक मुझे मैसेजेस कर रहे हैं रिगार्डिंग द सॉन्ग्स, बिकॉज आप लोगों के फीडबैक बहुत बहुत ज़रूरी है। बैक टू बैक एवरी गीत के बाद आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि आप सबको ये कितना शो पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओके जी, तो मैं आपसे और कब मिलने वाली हूँ? कल तो मैं आप सबसे मिलने वाली हूँ एट बीकानेर वाला, उसके बाद मैं मिलने वाली हूँ रथ यात्रा। सो लाइक रेडियो नेटवर्क इज सेलिब्रेटिंग द एनुअल रथ यात्रा दिस संडे 19th ऑफ जुलाई स्टार्टिंग फ्रॉम SKSST
2: गाइस एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: सो ये डीकैफ ओट मिल्क एक्स्ट्रा बट नॉट पाइपिंग हॉट 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
5: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
6: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
4: Here's your decaf oat milk, extra but not piping hot.
5: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
7: Feel the fun. Play Ojo.
6: 18 plus gamble aware.
8: आपके सामने एक red button है. नहीं दबाना था।
9: The madness is back. धमाल 4.
10: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
9: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
11: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
9: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
12: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाना?
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
14: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragazan. This week's Leica Extra podcast episode, we discuss roots and identity with East African Asians.
15: And, you know, also something as important as education, you know, we take for granted because it's a fundamental part of growing up, whereas our parents didn't have that. They built their careers or they got into work what they could. And it was kind of that opening for us that we could do what we want.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.
16: Ye hai Leica Gold.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.68 Indian rupee, 372.3 Pakistani rupee, 450.03 Sri Lankan rupee, 165.04 Bangladeshi taka, 88.86 Afghan Afghani, 173.13 Kenyan shilling and 1.33 US dollars.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
17: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £98.20 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम

0: कितना हुआ, इट्स 51 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। भाई ब्रह्मचारी फिल्म से जब हमने ये गीत आप सबके लिए पेश किया मोहम्मद रफी की आवाज़ में दिल के झरोके में, सो आप सबके इतने सारे मैसेजेस आए हैं, आई कैन एक्चुअली बेट ऑन दिस कि ये आप सबका कितना कितना ज़्यादा फेवरेट गाना रहा होगा। हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने कहा कि अश्विनी क्या आपको याद है कि किस तरह प्राण साहब ने अपने एक्सप्रेशन इसमें चेंज किए थे। आई सेड या हल्का फुल्का अगर मुझे याद है तो वो ना ऐसा एटीट्यूड वाला लुक देते हैं। तो यस, हमारे ये जो प्यारे लिसनर हैं इन्होंने याद दिलवाया कि जब ही वॉज ओके, जब तक वो मतलब राजश्री इज एंजॉइंग द सॉन्ग एंड व्हेन शी चेंजेस हर एक्सप्रेशंस, उनके भी एक्सप्रेशन चेंज रहते हैं। कितनी छोटी छोटी बातें एक्टर्स की हम सबको याद रहती है ना। एंड दिस गीत वॉज अमेजिंग, ऑसम। चलो अभी मैं इस आवर का आखिरी गीत आपको सुना रही हूँ, गंगा जमुना फिल्म से 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, लता मंगेशकर की आवाज़ में। उफ क्या गीत है, ढूंढो ढूंढो रे साजना। एंड दिस वॉज फिल्माया गया था ऑन वैजंती माला एंड दिलीप कुमार। रेडी गीत सुनेंगे? तो चलिए, अभी तो ये मध्यम वॉल्यूम में, लाइट्स डिम है एंड दिस अमेजिंग मेलोडियस ट्रैक। वही देखिए ना, इवनिंग शो विद अश्विनी में ना ऐसे कैसे एक एटमॉस्फेयर भी बन जाता है ना। मैं आपको बता रही कि लाइट भी डिम रखिए, मध्यम वॉल्यूम रखिए, एंजॉय करिए द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: दिस इज लाइका, दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: काजल्स कुटियर फॉर एवरी celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit gorgeouscouture.co.uk.
7: इल्फर्ड तैयार हो जाइए, वेंसडे 15 जुलाई शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला इल्फर्ड और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका। साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ। बीकानेर वाला 513519 क्रैनबुक रोड गेंटसिल इल्फर्ड IG2 6HA।
8: बीकानेर वाला परंपरा भी,
7: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद।
9: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
10: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
11: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208 951 0111.
12: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
13: The Evening Show with Ashwini.
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइक अ गोल रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. अच्छा, सच सच बताना, वॉज इट ओनली मी जो यहाँ पे इस गाने में जो ला ला ला जितने भी बार वो ला ला ला ला ला ला आ रहा है तुमसे मिलके, यहाँ पे स्टूडियो में भी वही चल रहा था. एंड आई एम ग्लैड टू नो कि काफ़ी हमारे लिसनर्स भी, उनके यहाँ पे भी एक तो ये बिल्कुल फुल वॉल्यूम में ये गीत प्ले किया उन्होंने, और साथ में जैसे मैं यहाँ पे ला ला ला किया जा रही हूँ मैं, से वो भी वहाँ पे ला ला ला किए जा रहे हैं. बस यही चाहते हैं कि ऐसे ही म्यूज़िकली आप मुस्कुराएं, खुश रहें, आपके हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट हो. एक लड़की को देखा, कुमार सानू की आवाज़ में 1942 अ लव स्टोरी से सुनाया आप सबको ये गीत. इसके बाद परिंदा तुमसे मिलके, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रैक. एंड आशा भोसले सुरेश वाडकर की आवाज़ में था ये गीत, फिल्माया गया था माधुरी दीक्षित एंड अनिल कपूर. अच्छा, रेखा एंड अमिताभ बच्चन की जोड़ी के बाद ना आई जेन्यूनली लाइक अनिल कपूर एंड माधुरी जी की जो जोड़ी थी ना बड़ी अच्छी लगती थी. एक तो तेजाब से इन दोनों को साथ में देखा, उन्होंने जितनी भी फिल्में की ना वी लव देम. हाँ, वॉज इट ओनली मी कि आपको भी उनकी जोड़ी पसंद थी? फटाफट लिख के बताइए. या आई नो माइक शुरू कर दिया था मैंने एंड आई वॉज ऑल्सो गुनगुनाइंग हियर अलॉन्ग विद द सॉन्ग. आप भी बिल्कुल गुनगुनाइए, हंसिए, मुस्कुराइए, गीतों को इन्जॉय करते चलिए. नेक्स्ट ट्रैक उफ, आशा भोसले की आवाज़ में, अगर वॉल्यूम बढ़ाया है डांस करने के लिए तैयार रहिए.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 रुपए और 40 पैसे. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज़ एंड सीज़ अप्लाई.
2: ये है लाइक अ गो.

0: What a fabulous track. Work, which was released in 1965, उस फिल्म से आशा भोसले की आवाज में सुनाए आपको ये गीत. एंड म्यूजिक डायरेक्टर रवि, जो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक है, उनके संगीत तले बना था ये गीत. फैंटास्टिक ट्रैक. मुझे ज़्यादा पता नहीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. जो म्यूजिशियंस अगर ये शो आप सुन रहे हैं, मेरे हिसाब से दो ही शायद इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए थे. एक तो था गिटार एंड द अदर वन आई जस्ट डोंट नो, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. बट फैबुलस फैबुलस ट्रैक. नेक्स्ट ट्रैक जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ वो है पिघलता आसमां से, तेरी मेरी प्रेम कहानी. यस. एंड आज मनाया जाता है नेशनल मैक एंड चीज़ डे. मैक एंड चीज़ में मुझे ना एक्चुअली वो चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने उसमें मैगी मसाला डाल दिया था, फिर चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, फिर थोड़ा चाट मसाला डाल दिया था. आई डोंट इवन रिमेम्बर क्या क्या मैंने ऐड किया था मैक एंड चीज़ में. बहुत चीज़ी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती. एनीवेज, तो साथ में आज किसी का बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगी, तो भाई हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, कीप शाइनिंग, कीप एक्सेलिंग. एंड साथ ही आज मनाया जाता है काऊ अप्रिसिएशन डे, नेशनल टेप मेजर डे. ये जो मैं डे पढ़ती हूँ ना यहाँ पे, नेशनल चिंपांजी डे एंड शार्क अवेयरनेस डे, तो ये सारे डेज ना एक्चुअली कहीं ना कहीं याद दिला देते हैं वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करती, लेकिन हम उसके लिए शुक्राना नहीं मानते, हम उसके लिए थैंकफुल या इनग्रैटिट्यूड नहीं होते हैं. ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना. अब नेशनल टेप मेजर डे, मतलब जो मेजरमेंट में जो टेप यूज़ होता है, सच में क्या आपने और मैंने कभी सोचा था कि इसके बारे में भी हम बात करेंगे? यही होता है इस शो पे. दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी.
1: द इवनिंग शो विद अश्विनी. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Like a Gold.
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइक अ गोल्ड रेडियो, लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स पर.
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट travelhubworld.com.
5: Kajal's Couture for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit kajalskachor.co.uk.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better.
8: Updates are sponsored this by Lem5 is Like a Gold.
0: Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
9: For £1, you'll get 128.71 Indian rupee, 372.26 Pakistani rupee, 449.93 Sri Lankan rupee, 165.02 Bangladeshi taka, 88.80 Afghani, 173.11 Kenyan shilling, 1.33 US dollars.
10: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
10: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
9: Gold is currently trading at £98.20 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
9: मिला लेंगे खड़िया, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 40 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. यस, तो गजल या कवाली मैं आज क्या सुनाने वाली. ओए होए, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट गजल्स. जगजीत सिंह की आवाज़ में कल चौदहवीं की रात थी, ये आपको सुनाने वाली हूँ. और साथ में आखिरी गीत होगा इस आवर का कुरवा सुहानी.

0: प्यार जिंदगी है। प्यार बहुत खूबसूरत है, तो प्यार दो, प्यार लो, और पावर का यूज़ तो लोग किसी को बर्बाद करने के लिए करते ना, एंड आई एम श्योर आप लोग वो नहीं है। ज़िंदगी खूबसूरत है, इससे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाइए भाई बिल्कुल भी। अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखिए, एंड यस टेम्परेचर्स अब हम पे हो रहे हैं मेहरबान। सूर्य देवता अपनी रोशनी तरह डिम करने वाले हैं, मतलब धूप नहीं होने वाली है। फिर भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, सनस्क्रीन लगाइए, अच्छे से खूबसूरत दिखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
3: Ghazal.

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office. On 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट रागासन.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: आपके सामने एक red button है. नहीं दबाना
3: था. The madness is back. Dhamal 4.
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
3: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
3: Watch the biggest family entertainer Dhamal 4 in cinemas now.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आगे कैसे आ जाना.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T&Cs अप्लाई.
8: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: योर नाइटली हिट्स गोल्ड नाइट्स ऑन लाइक अ गोल्ड।
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 hour line।
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 0208574-8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: She can't hear you, but danger always hears her coming.
5: Sab dar bhag jaye.
4: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas on the 17th of July. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
6: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
7: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.com.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Evening. How's your night shift going? Just a quick check-in from Acorn Insurance, the taxi specialists. We've been by your side for over 40 years, helping new drivers earn a no-claims bonus from day one and accepting up to 9 years no-claims from veteran cabbies. That's why we're the largest taxi insurance specialist in the UK. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Bye for now. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
2: चलो जाइए एक नवा सफर पर
3: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अनि दारिसलाम साथे जिंजा अनि मचिसन फॉल्स
4: बस पैक करो अनि रिलैक्स थई जाओ
3: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
4: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
3: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
5: इल्फर्ड तैयार हो जाइए वेंसडे 15 जुलाई शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला इल्फर्ड और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे क्रिस्पी राज कचोरी डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ बीकानेर वाला 513519 क्रैनबुक रोड गेंटसिल इल्फर्ड IG2 6HA
6: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी
5: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
8: Ears are great aren't they one on each side of your head for stereo It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Classic Nahumi, aapke apne Laika Gold par.

0: Your nightly hits. Gold Nights. This is Like a Gold.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
4: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
9: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार।

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: आपके सामने एक रेड बटन है,
2: दबा दिया।
1: नहीं दबाना था।
3: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
3: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
3: Watch the biggest family entertainer, Dhamaal 4, in cinemas now.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।

0: The biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: आपके सामने एक रेड बटन है.
4: दबा दिया.
3: नहीं दबाना था.
5: The madness is back. धमाल 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
5: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता.
9: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
10: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर.